मेरे ते ऐसी कृपा करो कि मैनू तेरा नाम ना बिसरे। ये बेनती कौन कर रहा है, ये अरदास कौन कर रहा है? गुरु नानक नू जिस किसे ने भी जिथे किथे पुकारिया, गुरु नानक उस दे दुख कटन वास्ते पहुंच गया। अज संसार नूं तारदे होए धन गुरु नानक सच्चे पातशाह दिपालपुर दी धरती ते जा पहुंचे। शामा दा समां है, ते साहब जी ने मर्दाने नूं आख्या, भई जा मर्दानिया ओ दुकानदार कोल पुछ भई कि असी मुसाफिर हां, प्रौणे हां संसार ते आए, और इत्थे मुसाफिर बन के दीपालपुर आए हैं, भाई एक रात बितानी है। जे रात तू दुकान बंद करके घर जावे ता असी तेरी दुकान दे बाहर आराम कर लवांगे। दीन दुनिया दा मालक सर्वशक्तिमान आप नारायण कलाधार धन गुरु नानक सच्चा पातशाह रात ठहरन वास्ते थां मंग रहे। सात सगत बोलो श्री ते जदों मर्दाना दुकानदार को लगया, भाई आ तू हट्टी बंद कर लो मैं तो असी रात इत्थे ठहर जाइए। वो कहिंदा भाई मैं आप नूं जानदा कोई नहीं, मेरी तुहाडे नाल कोई जान पहचान नहीं, ते तुसी इत्थे ना ठहरो, किथे होर चले जाओ। संसार ते ऐसे भी सन जिन्हां ने गुरु नानक दा दर्शन पा के भी उहदे चरणा दी छो ना लै सके। भाग होवन तां चरणा दी शो प्राप्त होवे। कह दिता महाराज असी तुहानू नहीं जानदे, कृपा करो अगे चले जाओ, रात ठहरन वास्ते किथे होर थां ढूंढ लो। दीन दुनिया दा मालक जगत गुरु तां

गुरु नानक सच्चा पातशाह कहन लगा, चल मर्दानिया भाई जे इथे नहीं ठहरन दी थां ता किते होर चली, चल इस पिंड विचों बाहर चली, शामा दा समा है। मर्दाने ने अखां उते हाथ रख के वेख्या, आख्या बाबा ओ दूर एक चुगी जिदे विच रोशनी है, लेकिन है इथों दूर पिंड तो बाहर दिखदी है। हजूर कहन लगे चल मर्दानिया फिर अज रात उथे ही बिताइए, चल के रात उथे ही कीर्तन करिए, उथे ही परमेश्वर दे गुण गाई, अज रात सफली करिए। साहब जी धन गुरु नानक सच्चे पातशाह बाले मर्दाने नू नाल लीता और जदों उस चुगी दे बाहर आके खड़ोते, साहब जी ने आख्या मर्दानिया जा भाई अंदर वेख इस चुगी दा मालक कौन है, ते उदे कोलों पुछ भाई आज रात असी इत्थे बिता लईए, सवेरे चले जावांगे। ते जदों मर्दाना चुगी दे अंदर गया ते चट बार आया मूह ते पल्ला मर्दाने दे, गरीब निवाज अंदर ता बड़ी बदबू है, क्यों मर्दानिया? पातशाह अंदर एक कोड़ी पिया हुआ है जिसे हाथ पैर कोड़ दे नाल गल चुके हैं, सारी थां अंदर बदबू हुई पई है। गरीब निवाज अंदर इत्थे रात नहीं ठहरन दी कोई थां। हजूर कहन लगे मर्दानिया जा उस कोड़ी नू बार सद के लिया, गरीब निवाज ओ तां तुर भी नहीं सकता, उदे तां पैर ही गल चुके हैं कोड़ दे नाल। अच्छा मर्दानिया जे ओ आप नहीं आ सकदा तां तू उसनू खिच के बाहर लिया। मर्दाना उस कोड़ी नू त्रू के खिच के बाहर लियाया, ते लिया के गुरु नानक सच्चे पातशाह दे सन्मुख कीता। लोग गरीब निवाज साहब जी ने तकिया कोड़ी वाल मेर दी नजर कीती, कोड़ी ने जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते, ऐसे रूहानियत दे दर्शन कीते, अकाल पुरख वाहेगुरु दे रूप दे जदों दर्शन कीते, तां कोड़ी दा तन मन ठर गया। आ जिस कोड़ दे विच हाय हाय बिलख रहा सी, कुरला रहा सी, ओ दुख भुल के गुरु नानक वाले अखा ला के तक रहा है। आख्या महापुरखो हे रब दे प्यारे हो, रब दे रूप कितों आए हो, ते मेरे जैसे कोड़ी दे कोल रात ठहरन वास्ते जिसनू घर वालिया ने भी कट छड़िया, दुरकार के कट छड़िया, क्योंकि किस वेले मैं भी बहुत धनी सा, मेरे पास बहुत पैसा सी, मां प्या दा साया सिर तो उठ गया, ते जितने मित्र दोस्त सन सारे धन नू ही चाहन वाले सन, ऐसी कुसंगत मिल गई मित्रां दी दोस्तां दी कि मैं गलत रस्ते तुर पिया, ते ओ जेड़ा तन सी उदे नाल मैं पाप कीते, ते जदों तन खत्म हो गया ते मित्र दोस्त भी साथ छोड़ के चले गए, ते उस तन दे नाल जदों मैं पाप कीते सन, ओ पाप हुण मेरे तन ते कोड़ बन के फुट पए हन। सतसंगत बोलो श्री, हुण जदों मैं कोड़ी हो गया तां मेरे घर वालिया ने भी आख्या हुण तू घर दे विच रहण दे लायक नहीं, क्योंकि तू छूत दी बीमारी है, जे तेरे नाल कोई होर लगेगा ओ भी कोड़ी हो जाएगा, इस वास्ते मैनू आ घरों
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਗਏ। ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਕੋਈ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਖੋ, ਕੋੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਖਬਰੇ ਆ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਕੋੜੀ ਦਾ ਆ ਵਿਰਲਾਪ ਸੁਣਿਆ, ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ, ਕੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਲਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਨਾਸ਼ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ?

अंतरजोत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विच दर्ज है। शब्द का मुख भाव रहाओ दी पंक्ति ते हुंदा है। रहाओ दी पंक्ति है जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतरजोत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने। कहानी कहंदे हन बीत चुकी घटना या जेड़ी घटना घट रही है उसनू कोई सुनावे कोई कहे अगर कोई झूठी कहानी सुनावे लोग उसनू भी सुनते हैं पर ए ते परमेश्वर दे नाम दी कहानी सच्ची कहानी और भगत कबीर साहब कह रहे हैं अंतरजोत राम परगासा। जिस वेले इंसान दे अंदर नाम दा प्रकाश हो जाए तां फिर ओ इस कहानी नू जान लैंदा है कि परमात्मा दे मेल दी अवस्था की है। पर एक गल है गुरमुख विरले जानी कोई विरला गुरमुख इस कहानी नू जानदा है।

संसार अमृत दी एक बगीची है, जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिमें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिमें कोई पंछी अपने खंभा नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें उह गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाऊ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु चरणा विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल अफुर अवस्था विच उस दे अंदर कोमलता रूप मानो एक कोमल बूटा उगदा है, जो उस दे शरीर दी तृष्णा नूं सुका दिंदा है। कबीर साहब कहंदे ने, मैं उस इंसान दा उस गुरमुख दा दास हां जिसने अपने अंदर उग्या होया एक कोमल बूटा देखिया। साध संगत, यह ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था दा शब्द है जेड़ा इस कहानी नूं जान लैंदा है कि परमेश्वर दे नाल गुरु मेल करांदा है, और परमेश्वर दे नाल जद मेल हो जाए ते फिर ओ इंसान की समझ

ज्ञान अंजन अंजन कहंदे ने सुरमा गुरु ने ज्ञान दा ऐसा सुरमा दिता कि मैनू इस गल दी सोझी हो गई राम नाम तो बगैर जीवन

ता तृष्णा रूपी जल सुख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है ये सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती, हर इंसान भज रहा जिद को एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्होंने तसली नहीं, कुछ होर चाहता है। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता है। हर इंसान भज रहे है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख बहुती माया विच भी नहीं।

क्योंकि बाणी गुरु देंदा है। इसे करके सतगुरा ने इंसान नु कहा किसे बेतारी दे पिछे ना लगो, बाणी नाल जुड़ो, क्योंकि बाणी परमेश्वर दी है। जो परमेश्वर कहंदे गुरु ओहो ही उपदेश करदे, ते गुरु कहंदे तुसी मेनू परमेश्वर ना कहो, मैं भी परमेश्वर दा भेजिया आया, मैं ते परमेश्वर दा सुनेहा तुहानू देना है, ते तुसी भी परमेश्वर नाल जुड़ो। ए बाणी मेरी नहीं, ए परमेश्वर दी बाणी। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विलालो। जेड़ा इंसान, जेड़ा पीर पैगंबर अपने नाल जोड़े कि सब कुछ मैं हां, मैं परमेश्वर हां, समझो वो परमेश्वर तू भुलिया होया। तो जेड़ा परमेश्वर नाल जोड़े असल विच, समझो ये परमेश्वर नाल जुड़िया होया है, क्योंकि ये परमेश्वर नाल जोड़ रहे हैं। ते सतगुरु जी कहंदे ने ए देवी देवते अवतार पीर पैगंबर सारियां नूं एक परमेश्वर भेजण वाला है, एक अल्लाह एक वाहिगुरु संसार ते भेजण वाला है, इस करके उहदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है तां परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हैं

कितना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे तावी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बारी आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे होंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा होंदा है गुस्से दे नाल, उहदे मन नूं चैन नहीं होंदा। रोशनी विच इंसान बैठा होवे अंधेरे विच होंदा है, अंधेरा केड़ा अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान यह है कि दूसरे का हक मैं खावा, अपनी सुख वास्ते दूसरे का हक खाना, दूसरे नु दुख देना, यह है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान यह है कि भाई सारे विच परमेश्वर है, सारे विच खुदा है, वाहेगुरु है। जे सारे विच वो है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां दी सोझी

परमेश्वर दी कहानी दा पता नहीं लगदा। गुरु परमेश्वर दी कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जिहड़े गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नूं जान लैंदे ने कि सारे विच

मंजिल तक नहीं पहुंचते। गुरु की लोड़ इस वास्ते है कि सच्चा उपदेश साढ़े हिरदे विच वसे, पर गुरु की प्राप्ति निम्रता प्यार और सेवा नाल हुंदी है। होता ते ब्रह्मा दो भरा सन, दोनों भगत ने, भगती दोनों भरा करते ने, किसे धनी पुरश ने दोनों भरावां नूं भगत जान करके अपने घर बुलाया।

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन दे। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। भावे उन्हें माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती, पर गए थे आप इकट्ठे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए और झगड़ा होंदा भी, अक्सर देखते हैं देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्होंने कोई सेवा का चा है, बहुत घट होंगे सेवा वाले, बहुते थे अपने स्वार्थ वास्ते ये नारा लगाते हैं असा सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं होंगी, सेवा ते मन होंगी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत पर माया पिछे लड़ पे। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होगा।

जित कर हर कंत ना प्रगटे, पाठ नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम, नानक की बेनंतिया कर कृपा दी जय नाम। हर मेलो स्वामी।

हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो हो। पुत्र कलत्र ना संगतना हर अविनाशी ओहो, पलच पलच सगली मोई झूठे तंदे मोहो। इकस हर के नाम बिन अगे लईए खोए, दया विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना को।

मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिख्या रंग कूड़ाव्या दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया सम

इतना माल के नजदीक चला गया जिमें दो मित्र एक दूजे नाल गल्लां करते कि दुश्मन नू भी ना आखी जाए। मालिक कोल बैठ के कह रहा है रब तू भी किठा से और बड़ा खतरनाक चल शायद दुनियावी ठगां दी जाल विचों कोई निकल जाए पर तेरा ऐसा जाल है कोई नहीं निकल सकता। वेख न एक तरफ बाप है एक तरफ पुत्र है पुत्र जवान होंदे दोहां विच तेरी जोत है वेख दिया पुत्र तुर जांदा है ते बाप ताई मार के रो पे कहिंदा है मेरे जीवन दा की पत ओ रो रही है ते तू तमाशा वेख कैसी तेरी ठगी है स्त्री नू पति लई पति नू स्त्री लई शिकवे हन। कबीर जी कहते हैं

के सिखो ओ मेरे दुष्ट दमन पिता साहिब कलगीधर पातशाह निरंकार दे चरणा नाल जुड़े हन। आपां भी थोड़ा समा मेरे पातशाह दे चरणा नाल जुड़ के इस शब्द नूं श्रवण कीजिए। मैनूं याद है कैलगरी विखे ये शब्द दास पढ़ रहा सी। आ गोरे सिख जिन्हां ते पातशाह दी बहुत मेहर है, बहुत कृपा है। आ नवे सिख सज रहे भावे उन्हूं समझ नहीं सी आ रही, सुन रहा सी। बीबी सी उसने उठ के कहा, भावे मैनू अर्थ समझ विच नहीं आए पर मेरा मन कलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के चरणों नाल जुड़ गया। उन्हें आख्या, मैं नितनेम नाल इसनू टेप ते सुनदी हाँ और बड़ा ही मैं जिवें शब्द सुन के हेमकुंड साहब ते पहुँच जानी हाँ। तो गुरु की साध संगत आओ, आपां भी उसे ध्यान नाल जिस ध्यान

गुरु अर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं चरण छलो मार्ग गोविंद। ए केड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता है। ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दी उस्तति करनी ओदे गुण गाउने। ए मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीव। ए रचना पवित्र हो जाती है जदों नाम दा अमृत पींदी है जपदी है श्री वाहे गुरु। निर्मल रचना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर रै जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम दा अमृत समा गया है उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार नजर आउंदे हन। जे उदा परिवार है तां एक पिता एक सके हम बालक। साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसदे बालक हां। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत च बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी। आओ सारे प्यार दे नाल जपिए।

नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ध्याया। जिन्हां ने नाम नू ध्यावना कीता, जिन्हां ने नाम दी गालना खालियां ए मुशक्कत कीती है, फिर वो आप ही नहीं तरे, अनेकां जीव होर भी उना दे चरना नाल लग के तर गए। गुरमुख कोट उधारदा गुरमुख कोट उधारदा दे नामे एक कण। जिन्हां ने नाम दी घालना घाली नाम दी कमाई कीती ओ फिर अनेकां नूं होरनां नूं भी नाल ही तार के गए हन। इस लई हजूर बख्शिश करदे हन चरण चलो मार्ग गोविंद। इस मार्ग ते चल के अपने जीवन नूं असी सफल करना है। गुरसिख दा जीवन अमृत वेले उठना, इशनान करना ते फिर सतसंगत विच बह के मालक दी सिफत सलाह करनी, ए गुरसिखी है, ए जीवन है सिख दा। इस मार्ग नूं हजूर दस रहे हैं।

तू बेअंत, तू क्यों बेअंत है? इसने प्रथाए नौ में पास दिन विकथन कीता, हर की गत नाही कौ जाने, जोगी जति तपी पछारी और बहलोक सियाने। तू बेअंत को विरला जाने, को विरला जाने, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी, आपे देखन हारा नाना रूप तरी भौ रंगी सब तेरे लिया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब, मुन इंद्र महाशिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा,

माता जी का कोरा जवाब सुन के जलाद परत आया, कंध मुकम्मल तैयार हो गई, साहिबजादे असहे ते अकह कष्ट सहार दे होए शहीदी पा गए, धरती कंब उठी, आसमान डोल गया।

सासत सिमृत वेद चार मुखागर बिचुरे तपे तपी सर जोगिया तीर्थ गवन करे खटकर माते दुगुणे पूजा करता नाए रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जान राज मिलख

कोई गावे कोई सुने किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं कि कोई खास व्यक्ति ही इस नूं गा सकता है या सुन सकता है, बल्कि जो भी श्रद्धा नाल इस नूं पढ़ता है, श्रद्धा नाल इस बाणी नूं सुनता है, ये बाणी उसे दा कल्याण करती है। ऐसी है ये अमृतमयी बाणी, जिस बाणी प्रथाएं गुरु पातशाह कहते हैं।

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा ये थाल है धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिस दे विच ए बाणी असा कलयुगी जीवां दा उद्धार करन हित गुरु नानक ने कलयुगी जीवां नू दित्ती है मेर कीती है पातशाह ने।

तारीफ करदे ने। आम चंगे चंगे विद्वान पुरशां ने, गुरु महाराज ने भी धरती नूं माता कहा है। धरती बड़ी चंगे सुभा दी है। भाई साहब कहंदे ने इदां दा सुभा बना लै।

गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्होंने 12 साल सेवा की थी। 72 साल दी उम्र विच बाबा अमरदास जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना होंदे ना ओ उथे एक नजर ते ही मन जांदे, पहली नजर ते ही मन जांदे। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मैनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, 5 मील तुरदे हुए ब्यासा।

चुक चुक जा रहे सात सगत बोलो श्री, क्योंकि जितना फल लगता है टैणी नू ओ टैणी उतनी चुकदी चली जाती है। एडी सेवा करके 12 साल सेवा कीती गुरु अमरदास जी ने, ते फिर की होए गुरु नानक दा रूप बन गए सत्संग।

पदानी से कि इस तरह परमेश्वर दा सदा आ जावेगा। साहब जी कहंदे ने इंसान हर काम महूरत देख के करदा। घर बनाना होवे घर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे या कोई ब्याह होवे, कोई भी खुशी दा काम होवे ता इंसान सारियां तो पहला दिन देखदा है, तारीख देखदा है, महीना देखदा है, साल देखदा है, मुहूर्त देखदा है। ये काम इस महीने इस तारीख नू करना है, इस वेले करना है ताकि सारियां नू बुला लवां, किधरे कोई नाराज ना हो जावे कि मैनू नहीं बुलाया। गुरु साहिब जी कहंदे ने ऐ इंसान तू हर काम महूरत ते कीता, दिन देख के कीता, साल देख के कीता, पर मरन लगिया तू कोई महूरत ना देखिया, कोई तारीख ना देखी, ए ना सोचिया इस दिन इस तारीख नू इस महीने इस मुहूर्त नू मरा सारिया नू दस दिया ताकि कोई नाराज ना हो जाए कि मैनू नहीं बुलाया। साहब जी कहंदे ने ए इंसान हर काम तू मुहूर्त दे कर सकदा है, पर जड़ी मौत है ए मुहूर्त नहीं देखण देंदी। मरण ना मुहूर्त पुछया, पुछी थितना वार, मौत ने ना दिन देखण देता, ना तरीक देखण दीती, ना कोई महीना देखण देता। बस इन्ना ही पता लगा चंगा पाला सारे परिवार नू मिलके घरों तुरिया कि मैं चलदा आ जावांगा वापस, घरों ते तुर पिया। परिवार नू मिलके बड़ा खुश है, पर की पता सी कि जांदियां जांदियां रस्ते विच ही परमेश्वर दा हुक्म आ जाना। घर वाले कारू डीकते पए ने, आ जाणगे शाम नू, मेल हो जाएगा, पर क्या पता सी उस तां वापस नहीं आना, पर उहदी मौत दा सुनेहा जरूर आ गया। रस्ते विच जांदे हैं हुक्म आ गया परमेश्वर दा, आया हुक्म पार ब्रह्म का, उस अल्लाह उस पार ब्रह्म दा हुक्म आ गया। जांदियां जांदियां रस्ते विच हुक्म आया मौत हो गई। साहिब जी कहंदे ने बड़ा कुछ बनाया, हाली मन दे चाह भी पूरे ना होए, पर जद हुक्म आया तां छोड़ चलिया। एक दिहाड़े जो कुछ बनाया सी सारा कुछ एक दिन छड़ के तुर पिया, ना पत्नी दा ख्याल, ना बच्चियां दा, ना रिश्तेदारां दा, ना सजना मित्रां दा कि आखरी वेले किसे नू मिल ही लवां। नहीं, परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढ़ा है, जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नू मिलण दा समा नहीं मिलदा। हुक्म बड़ा डाढ़ा है, आया हुक्म पार ब्रह्म का, छोड़ चलिया एक दिहाड़े। हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तू अपने प्यारियां नू रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

राज मिलक जोबन ग्रह शोभा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड गया राज भाग जोबन जवानी ग्रह केंद्र ने कारण अपना कार शोभा सोना रूप सारा कुछ छड के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी हाथी कोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड के जो बड़े चा नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

जदू किसे दा कोई प्यारा मर जावे असी कह देने सबर करो जो होना सी हो गया हुक्म सी परमेश्वर दा परसा संगत हुक्म मनना कोई सौखा नहीं ये भी सच है एक दिन मरना है पर यह भी तो सच है कि विछोड़ा सहना बड़ा औखा है किस दुख का उन्हें पता है जिदा कोई मरे क्योंकि गुरु साहबा ने इस दर्द नूं समझिया अगर किसी औरत का पति मर जाए मां का पुत मर जाए उस दुख नूं गुरबाणी विच साहब जी बयान करदे ने ओ मां जिहदा पुत्र जिन्हों ने बड़े चा नाल पालिया कहिंदे ने हर मां बाप की इच्छा हुंदी साडा पुत्र वड्डा होवे जदों असी मरीए ये सानू मोढ़ा देवे पर ऐसे मां बाप नूं जदों ये पता लगे कि साडा पुत्र मर गया ते उन्हां दा दुख की हो सकता है कबीर साहब जी बयान करदे ने देहुरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए पाई वेड़े विच बैठी मां रोंदी पई है जिस पुत्र नूं पालिया जानदा तां मेरा समां सी उस पुत्र नूं मरिया देखिया जिन्हों चार भरा आए चुक के लै तुरे एक पासे मार हो रही है दूसरे पासे लट छिटकाए तिरिया रोवे तिरिया औरत नूं के एक पासे वाल खिलार के औरत पई रोंदी है जिदे सिर दा साईं चला गया ओदे दुख नूं कौन समझ सकदा है साहब जी धन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने औरत भी पति नाल ही सौंदी है जद तक पति जिउंदा है आदर सारे दिंदे ने पति ना रवे ते दुनिया विच जीवन जीवना बड़ा औखा हो जांदा है साहब जी बाणी विच बयान करदे ने

बंके कहंदे ने पति नूं जिन्हां दे पति मर गए जिन्हां वापस नहीं आना उन्हां औरतां दे बारे साहिब जी कहंदे ने तिन क्यों रहण विहाणी उन्हां दीआं रातां हुण किवें बीतण क्यों औलाद किन्नी भी नेक होवे रिश्तेदार किन्ने भी चंगे होण पर पति दी थां कोई नहीं लै सकदा। साहिब जी बाणी विच बयान करदे ने ਉਹ ਪਤਨੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

कदी हसो ना, क्यों मौत एक सच्चाई है, जीवन झूठ है। असी लोग मौत नू भुला देने हैं, पर मौत इंसान नू कदी नहीं भुलदी। समय नाल ओ आके ले जांदी, क्योंकि ओदा हुक्म बड़ा डर। पति ना रवे ते औरत दा जीवन कहो जे है, तन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने। औरत दे दर्द नू समझिया, अपने आप नू फिर कहन लगे, ऐ परमेश्वर, ऐ अकाल पुरख, तू मेरा पति है। जिवें औरत दा जीवन पति तो बगैर कुछ नहीं, तू मेरा पति है, तेरे बगैर मेरा जीवन भी कुछ नहीं।

दी इस वास्ते के है कि मां बाप नियामत ने विछोड़ा किसे दा भी पवे विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। मां मरे प्यो मरे पुत्र मरे पत्नी मरे चाहे पति मरे पर साहब जी कहंदे ने ए भी सच है मरना जरूर है ए भी सच है कि दुख सहना बड़ा औखा है। इसे वास्ते ए बाणी दिती है कि परमेश्वर दा सिमरन करो दुनिया नू नाशवान समझो ताकि इस दुख नू तुसी सह सको ए समझ सको ए हुकम सी जिड़ा आया है उन्हें जाना जरूर है। एक दिन असी भी जाना है ताकि दुनिया दे नाल इन्ना मोह ना करिए कि मरण लगे हैं।

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े, हर इंसान ये चाहता है कि मैं किसे ना किसे ते हुक्म चलावा, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। ते इंसान लड़ाइयां जितता है, तरक्कियां करता है, बड़ा कुछ बना भी लैंदा है, ये भी कहता है हों मारो हों बंदो छोड़ो, मुख ते एव बबाड़े। मुख कहंदे ने मोह नूं, मोह तूं इह भी कहंदा है मैं जिन्हों चाहवां उन्हों मार सकदा, जिन्हों चाहवां उन्हों छड़ सकदा। पर साहिब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल भी सलाह करके सौंदा है, पर उदों ही पता लगदा है हुक्म आ जांदा है, मौत आ जांदी है, कल

0: You're listening to CNET Radio.
1: साहेब श्री गुरु नानक देव जी ने शब्द कीर्तन द्वारा इस जलंदे जगत नू तारन लई गुरमत संगीत परंपरा दी दात बख्शी। रहमता परी इस परंपरा नू समूह गुरु साहबान ने सदियां तो सिखी जीवन दे अनिखड़ अंग वजों स्थापित कीता है। दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी बाणी दे अखुट खजाने विच वक वक रागां गायन शैलियां अते संगीत छंदां दी अदूती दात प्रदान कीती है। आप जी दी पवित्र बाणी शब्द हजारे पातशाही दसवीं हर गुरसिख हिरदे विच वसी हुई इलाही बाणी है। श्री दसम ग्रंथ साहिब विच इस बाणी नू वख वख रागां विच अंकित कीता गया है। गुर किरपा अते समूह संगतां दे सहयोग द्वारा संत बाबा सुच्चा सिंह जी जवद्दी टकसाल दी अगवाई विच विस्मादनाद संस्था गुरमत संगीत दे शुद्ध ते मौलिक स्वरूप नू प्रचारन दी सेवा विच लीन है। आओ सरवण करिए राग निर्णायक कमेटी द्वारा प्रवाणित स्वरूपां अनुसार शब्द कीर्तन शब्द हजारे पातशाही दसवीं।

तू क्यों व्यर्थ है? जिसने प्रथाए नौवे पातशाही ने विकथन किया, हर की गत नाही को जाने, जोगी जति कपी पछारी और बहलोक सियाने। तू बेअंत को विरला जाने, को विरला जाने, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेन ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब, मुन इंद्र महाशिव जो करी। तू बेन अत ऊंचा ताका दरबारा,